तू बेअंत को विरला जाने, को विरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा। तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरी बहु रंगी सब तेरे निया। तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सबे, मुन इंद्र महा शिव जो करी। तू बेअंत अत ऊंचा ता का दरबारा,

सिप साला करन वाला, कीर्ति करन वाला, उसनु गुरु महाराज ने ढाडी का नाम दिता है। इतिहास विच पुराने ग्रंथां विच जिक्र आउंदा है कि भगवान की उस्तत करन वाला जो हर वेले अपने हत्थां दे विच वीणा लैके रखदा सी, जिसका नाम नारद करके आया है, हर वेले प्रभु की उस्तत करदा सी, कीर्तन करदा सी परमात्मा। एक वे नारद भगवान ने प्रभु कोल एक सवाल किया, है भगवान जे तेरे दर्शन करने हो ता दस किथे तेरे दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि तेरे दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। प्रभु का मिलाप भावे कोई आखे के हथा दिया हथेलियां दे विचकार दर्शन करा दें, कोई आखे त्रिकुटी चढ़ा के तेन दर्शन करा दें, कितने ही कर्मकांड करके कोई आखे के दर्शन हो जान, ये नामुमकिन है, ये पखंड है, कर्मकांड है, इंज दर्शन नहीं होंगे। उसके ओदे दर्शन भगवान नारद कहते हैं कि ऐ परमात्मा तेरे दर्शन करने होने तक किथे दर्शन करा। तो कहते हैं कि भगवान ने उस वेले कहा, ऐ भगत जे मेरे दर्शन करने हो ना मैं किसे दक्षण विच वसदा हाँ, ना किधरे पश्चिम विच वसदा हाँ, अते ना ही किसे खास स्थान ते मेरा वासा है, ना मैं मंदिर विच हाँ, ना किसे मस्जिद विच, ना किसे गुरुद्वारे विच, ना किसे गिरजे विच, जेड़ा मैनू इन्हां थावां ते लोड़दा है वो भरम विच है, जे मैनू लभना होवे तां मैं जिथे संगत प्रभु दे भगत जन बैठ के कीर्तन करदे होवन, उना दिया जिथे जुतियां पईयां होवन, उना दी जुतियां दी थां दे उत्ते उना दी चरण धूड़ दे विच मेरा स्थान। भगवान अपने भगतां दे वस है, उना दी संगत भगत जेड़े हन भावे जिथे मर्जी उसनू प्रगट कर लैन, भगत ने चाहिया तां पत्थर दे विचों भी प्रगट कर लैन, जे भगत ने चाहिया तां उस परमात्मा कोलों अपनी खेती दे विच हल भी जुताया, अपने डंगर भी उस कोलों चुगवाए। ए भगतां दी खेड है जिन्हां नूं प्रतख दर्शन हुंदे हन उस वाहगुरु दे। परमात्मा ने कहा है, ऐ नारद मेरा घर मेरा स्थान साध संगत दे विचकार है, उस तो सिवा मेरा कोई स्थान नहीं। जिहड़े उस्तत करदे हन, सिप सालाह करदे हन, इक मन होके जपदे हन, कीर्ति दे विच जुड़े होए हन, निष्कपट होके, निर्छल होके, निस्वार्थ होके जिहड़े कीर्ति करदे हन प्रभु दी, उन्हां नूं मैं प्रतक अंतस्करण रूप विच अंतर आत्मिक दर्शन दिंदा हां, उत्थे मेरे दर्शन हुंदे हन। और भगत नारद इतना प्रभु का निकटवर्ती सी, प्रभु की प्रसन्नता सी उस भगत नारद उत्ते, क्योंकि वह कीर्ति करने वाला सी। तो गुरु महाराज ने गुरबाणी दे विच कीर्ति करने वाले नूं, कीर्तन करने वाले नूं, सिप सालाह करने वाले नूं ढाडी का नाम दिता।

कोई रिश्वत खोर हो गए ने। ओही करम धर्म नू भुला के सच नू छड़ के झूठ दा बुरका उड़िया होया है। और ए हालत हुई है

तह रावण घर खबर न पाई, क्या जाना क्यों मरेंगे, कैसा मरना होए मत कोई जानो अवर कछ, सब

एक जंगल समान है जिस दे दूर दूर ता बड़ी भयानक अग लगी हुई है। जो अग्नि वड़े वड़े रुखां नूं पले हुए रुखां नूं सारदी तुरी जांदी है। ते जे पिछे वेखिए ता कोमल बूटे होर हरे होंदे आउंदे हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु दी रचना सब में जोत जोत है सोए एक पासे संसार नूं समाप्त कर रहा है एक पासे संसार नूं जन्म दे रहे है। उस दी जोत सदा परिपूर्ण है जिस तरह अनेकां घड़ियां दे विच जल हुंदा है ते सब घड़ियां विचों आकाश मंडल नजर आ रहे है। घड़े जल दे भरे हुंदे हन ते उस जल विचों आकाश मंडल नजर आ रहा हुंदा है। ते जे कोई घड़ा टुट जावे ता आकाश नहीं मरदा केवल ए शरीर दा ठीकरा ही टुटदा है। इसे तरह ही संसार ते जो जीव आउंदा है साहब कहंदे हन कौन कहंदा कि फलाना मर गया है नहीं कौन मुआ रे कौन मुआ ओ ता पमने में पवन समाया पंज तत्तां दा इंसान बनाया ओ पंजे तत्त जदों वख हो जांदे हन इंसान दी मृत्यु हो जांदी है। साहब कहंदे हन पमने में पवन समाया ज्योति में ज्योत रल जाया माटी माटी होई एक रोमन हारे की कमन टेक कौन हुआ रे कौन हुआ। ए अकाल पुरख वाहिगुरु दी रचना है ए जग ए सारा संसार उस ईश्वर दी कोठरी है रचना है। साहब बाणी विच इस प्रकार दस रहे हन।

साहिब सिफत सवालियो जिनकी तीसो पार पया कहो नानक करते किया बाता ओ जो किछ

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वणतरण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जाल ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, धुन आप वजाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तप तापे, आपे

आपे धरती आप है राहत आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत सद

भूले, कहूं पवन है के बहे बेग ऐसे, कहे मोन आवे कथों ताहे कैसे, कहूं नाद है के भली भांत बाजे, कहूं पारधी है धरे बान राजे।

कतहु सुचेत होय के चेत न कुचार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होय के मांग तु फिरत भीख, कहु महादान होय के मांग्यो धन देत हो, कहु महा

कहूं देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देत हो। कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी से, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो। कतहूं विचार अविचार को विचारत हो, कहूं निज नार पर नार के नकेत हो। कहूं बेदरीत कहूं तासों बपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत का।

कऊ शस्त्रधारी कऊ विद्या के बिचारी कऊ मारत आहारी कऊ नार के नकेत हो कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

बादशाह कहन वाले कह छड़ देने। भाई गुरु गोबिंद सिंह जी ने अवतारा उन्दे बड़ा खंडन कर दिते कि उन्हां दे दिल विच कोई भेद सी फर्क सी। बादशाह कहन लगे नहीं मेरा किसे नाल वैर नहीं, मैनू जिवें वाहगुरु ने गल्लां आखियां ओ मैं संसार नूं दस रहा। दूजी गल ओना तो विछोड़ के जे मैं आखा मेरे पैरां दी पूजा करो तां ते मैं भुल विच मैं कहंदा भई नहीं ओ भी दस रहे ने मैं भी दस रहा, उस वाहगुरु दे तुसी भी सेवक बनो इसलिए मेरा किसे नाल वैर नहीं। हजूर कहंदे ने

अंतर जोत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच दर्ज है।

तीन बंधा विच इस तरह वंडदे हन। हे भाई, जे कोई मनुख अपने आप नूं गुरु दे हवाले करदा है, ओ प्रकाश रूप परमात्मा दे मेल दी अवस्था नूं समझ लैंदा है। उस दे अंदर जोत जग पैंदी है, उस दे अंदर राम दा प्रकाश हो जांदा है। पर इस अवस्था नाल जान पछाण करन वाला हुंदा कोई विरला ही है। गुरु दे सन्मुख होए अजिहे मनुख नूं इह समझ आ जांदी है कि संसार एक रुख समान है।

संसार अमृत दी एक बगीची है जो उस पूर्ण परमात्मा ने बनाई है। जिवें एक पौरा फुल दे रस विच मस्त होके फुल दियां खिड़ियां पत्तियां विच अपने आप नूं जा बनाउंदा है, जिवें कोई पंछी अपने खंभां नाल हवा नूं उलारा दे के आकाश विच उड़दा है, तिवें उह गुरमुख नाम रस विच मस्त होके पूर्ण खड़ाओ नूं अपने हिरदे विच टिकांदा है ते सोच मंडल विच हुलारा दे के प्रभु चरणा विच उड़ारी लांदा है। उस गुरमुख दी उस अडोल अफुर अवस्था विच

मैं सिमरन करके ये गल जान ली है कि सिमरन करन दे नाल जिथे दुखा का नाश होंदा है उथे जग जीवन सिंह जीव समाना जीवन देन वाला जेड़ा परमात्मा है ओ दे नाल जीव दा मिलाप हो जांदा है और ओ इंसान इस कहानी नू जान लैंदा है सिमरन सदका कि सारे विच परमेश्वर दा नूर है ओ दी जो

ता तृष्णा रूपी जल सूख गया, मन दी हर तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि नाम जिहड़ा है ये सारिया भुखां तृष्णावां खत्म कर देंदा। हर इंसान एक चीज मिले ते दूसरे दी इच्छा मन विच पैदा होंदी, हर इंसान भज रहा, जिद कोल एक चीज है उसनु दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्हें तसल्ली नहीं, कुछ होर चाहता। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वो रजिया नहीं, कुछ होर चाहता। हर इंसान भज रहे है, पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख बहुती माया विच भी नहीं।

जितना समा परमेश्वर दे नाम दा कीर्तन सुनोगे उतना समा तुहानू अपने दुख कलेश भुल जाणगे। ते जदों उस रंग विच उठोगे दुख कलेश फिर घेर लैणगे। इसे वास्ते ते गुरु महाराज भगत गुरमुख उपदेश करदे हन कि हर वेले परमेश्वर वल ध्यान रखो। जिवें कीर्तन सुनदे आ दुख भुल जांदे ने, हर वेले उहदा नाम चेते रखोगे ते दुख कलेश कदी भी तुहानू तंग नहीं करनगे। पर इन्हां गल्लां दी सोझी हुंदी है जदों गुरु अते गुरु दी बाणी दा सानू ज्ञान होवे। गुरु की है? गुरु है बाणी, क्योंकि गुरु बाणी द्वारा उपदेश दिंदा है। इसे वास्ते सतगुरु जी अपने शब्द विच इस तरह फरमाते हैं,

हजार सूरज होवे सौ चंद्रमा होवे पर जे गुरु नहीं मिलिया तां इस चाननी दा क्या फायदा जे मन दे विच ज्ञान नहीं मन विच अज्ञान है।

परमेश्वर की कहानी का पता नहीं लगता। गुरु परमेश्वर की कहानी दसदा है कि सारे विच परमेश्वर है, ते जेड़े गुरु का उपदेश सुनते ने फिर इस कहानी नू जान लेंदे ने कि सारे विच

जितनी माया तेनू दिती है उतनी तू ले, जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे कोल रहन दे। पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा, सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती। पावे उन्हें माया तेनू बहुती मेनू थोड़ी दिती, पर गए थे आपा कट्टे से, इस करके असी बराबर हिस्सा करना। और पैसे तू झगड़ा हो गए, और झगड़ा हुंदा भी अक्सर देखते हैं, देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधरी और माया दे पीछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं। इस वास्ते नहीं कि उन्हां नूं कोई सेवा दा चाह, बहुत घट हुंदे हन सेवा वाले, बहुते ते अपने स्वार्थ वास्ते ए नारा लगांदे ने असां सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं हुंदी, सेवा ते मन हुंदी। हुण मन विच लालच दोनों भरा हैगे ने भगत, पर माया पिछे लड़ पए। ए लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता, ब्रह्मा तू लालच कीता, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होगा। पानी विच रह के, पानी दे विच रहन वाले जीवां नूं खा के अपनी लालच वाली ए बिरती पूरी करेगा। हुण ब्रह्मा ने भी तप कीता, उसनों भी गुस्सा आया, उसने भी श्राप दे दिता। कहन लगा ठीक है भरा, जे मैं मर जाना तो जिंदा तू भी नहीं रवेगी, तेरी भी मौत होवेगी, तू जंगल दा मस्त हाथी बनेगा। और जंगल विच भटकदा भटकदा एक दिन उसे जगह आवेगा जिथे मैं होवांगा। मैं पानी दे विच होवांगा, तू पानी पीण आवेगा, ते मैं फिर अपनी तारां दे नाल तेरियां लत्तां पकड़ के उथे पानी दे विच मैं तेनू गोते दे दे के मारांगा, और इस गल का बदला लवांगा कि तू मैनू श्राप दिता है। ने भगत पर माया विच आ गई, और माया ने दोनों नू भगती दे थां तू थले सुट दिता। समा आया, दोनों दी मौत हुई, वड्डा मस्त हाथी बन गया और छोटा तंदुआ बन गया। इस गल नूं गुरबाणी विच भी साहिब जी बयान करदे हन, राम गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो, कर ऊपर कढ निस्तारे। गज पत पार उतारे, अनेकां शब्दां विच इस साखी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच और हिंदू पुराणा दे विच आंदा। एक भरा हाथी बनिया, एक तंदुआ बनिया, और वो समा आया होता जिहड़ा हाथी बनिया सी, बहुत सारे हाथी इहदे नाल ने, यह जंगल विच फिरदा फिरांदा गंडका नदी दे डुंबदे आ पहुंचिया। गर्मी सी, नदी दे विच जद वड़िया और किनारे ते धुप करके पानी गर्म सी, ए ज्यों ज्यों अगे होया इस नूं ठंडा पानी मिले, और हौली हौली ए हाथी पानी दे विच काफी अगे तक चला गया, और अगे एदा छोटा भरा तंदुए दी जून विच बैठा सी। उसने अपनी तारां दे नाल हाथी दे अगले पैर पकड़ ले, और हाथी नूं अपने वल खिंचना शुरू कीता। पहला ते हाथी ने परवाह ना कीती, पानी पी के वापस मुड़न लगा, पिछे नहीं मुड़िया जांदा, ते हाथी समझ गया मैनू कोई पकड़न वाला तगड़ा जीव है, इसने जोर लाया। कुछ पिछा आया, पर फिर तंदुए का योर चलिया।

रहने वाला नहीं थक गया। संसार साहिब कोलों दाते कोलों दाता लैंदा है सदा।

सबे साक कुड़ावे डिठे पल्ले तेंडे लागे। सिख दा गुरु है श्री गुरु ग्रंथ साहब, और जो सिख गुरु ग्रंथ साहब दा ओट आसरा त्याग के किसे होर पासे जावेगा, किसे देवी देवते वल, होर किसे दी आसा मन विच रखेगा, कबरां नू जाके पूजेगा, मणिया मसाणा विच जाएगा। आख्या जिवें बछड़ा अपने गऊ अपनी गऊ मां दे थणा नू छड के दूसरी गऊ दे थणा ते जाके जे दुध मंगेगा तो उसनू कदे उत्थों दुध नहीं मिलेगा, लत ही मिलेगी। सात संगत बोलो श्री भाई गुरदास जी कहंदे हन, इसे तरह जे अपने गुरु दा ओट आसरा छड के जे दूसरे किसे पासे जावेगा ता भाई कदे पूरी नहीं पवेगी तेरी। बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरा वाले आप क्या करदे सन, जे सिख दी गुरु ग्रंथ साहब ने पूरी ना पाई ता फिर कोई पा नहीं सकदा। सात संगत बोलो श्री सिख दा गुरु है गुरु ग्रंथ साहब, सेवा कर ता गुरु ग्रंथ साहब दी, और जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब दी सेवा कीती सारी सारी रात नाम जप के गुरु ग्रंथ साहब दी हजूरी विच खड़ो के बाबा नंद सिंह जी ने नाम जपया ते फिर गुरु ग्रंथ साहब विचों गुरु नानक नूं प्रगट करके दर्शन कीते। सात संगत बोलो श्री भाई लहणा जी सेवा करके ही गुरु नानक दे कोलों बख्शीशां लै गए, गुरता गद्दी लै गए। गुरु नानक दे घर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती तां उहदी मनोकामना पूरियां होंदी, जे गुरु नानक दे घर दी सेवा किसे ने निष्कामता दे नाल कीती तां गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। सात संगत बोलो श्री भाई लहणा जी निष्कामता दे नाल सेवा करदे दिन रात, फिर ओ दिन आया जदों गुरु नानक ने अपने हिरदे नाल ला के आख्या लैणिया भाई तू लेना है ते असी तेरा देना है। इस वास्ते आज तो अपने अंग ना ला के गुरु नानक ने लेने नू अंगत कर देता, अपनी जोत गुरु अंगत दे हिरदे विच रख दिती ते आख्या हुण तू खंडूर विच जाके संगतां नू नाम जपाओ। गुरु अंगद देव जी खंडूर दी धरती ते बैठे हर वेले यही अरदास करम, सेवी साहिब अपना अवर न जाचो कोई, गुरु नानक जदों दा मैं तेनू वेख्या तेरी सेवा कीती है हुण मेनू अखां विच होर कोई जचदा ही नहीं। सेवी साहिब अपना अवर न जाचो कोई, नानक तांका दास है बिंद बिंद चुख चुख होए। रोज अमृत वेले उठ के साहिब जी उथे संगतां नू दर्शन देंदे हन, नाल कीर्तन नाल जोड़दे हन। एक दिन अमृत वेले दा समा गुरु अंगद दे पातशाह खंडूर दी धरती ते बह के दीवान सजाया, ए शब्द गा रहे सेवी साहिब अपना वरना जाचो कोए, तां भाई बाला गुरु अंगद दे पातशाह दे दर्शन करन आया के मैं वेखां ओ कौन पुरख है जिसने गुरु नानक नूं भी जित लिया है, जिसने गुरु नानक दा हिरदा जित लिया है। जदों भाई बाला जी आए दीवान विच साहिब जी शब्द नाल गा गा के झूम रहे, और जिस वेले गुरु अंगद दे पातशाह दी अखां खुलदियां सन भाई बाले ते जा पैंदियां। साहिब जी ने थोड़ी देर बाद अपने कोल बुलाया ते पुछया भाई कौन है कित्थों आए हैं। भाई बाले ने हाथ जोड़ के आख्या गरीब निवाज मेरा नाम भाई बाला है, और मैं सारी उम्र गुरु नानक पातशाह दे नाल रह के उन्हां दी सेवा कीती है। जदों गुरु अंगद दे पातशाह ने सुनिया भाई बाला उठ के खड़ो गए, हिरदे नाल ला लिया, आख्या तू बाला है मेरे गुरु नानक दा साथी। कोल बिठा लिया आख्या सुना ना गुरु नानक दियां सिफतां, गुरु नानक दियां साखियां।
जिवें जिवें भाई बाला गुरु नानक दियां सिफतां साखियां गाउंदा है गुरु अंगद दे पातशाह दे नैन कटोरे वस रहे हन। जदों कोई प्रीतम दी अपने प्यारे दी गल सुनावे ता उदी याद विच फिर अखां विचों नीर वह तुरदे हन। सा सगत बोलो श्री कुछ दिन भाई बाला उत्थे रहा ते साहब जी ने लिखारी दे के भाई बाले कोलों जन्म साखी लिखा ली गुरु नानक दी। एक दिन भाई बाले ने आख्या गुरु अंगद दे पातशाह नूं गरीब निवाज मेरे मन विच एक संसा है निवृत कर। साहब जी कहन लगे बोल भाई बालिया गुरु वल संसा रखना नहीं चाहिदा कदे क्योंकि जिन्हां दे हिरदे विच संसा रह जांदा है उन्हां दा हिरदा मैला हो जांदा है। संसा कढ अपना ता भाई बाले ने हाथ जोड़ के आख्या के सारी उम्र गुरु नानक दी सेवा मैं कीती गुरु नानक पातशाह दे नाल मैं रहा ते जदों गुरता गद्दी देण दा समा आया ते आप नूं बिठा दिता गद्दी ते। गुरु अंगद दे पातशाह कहन लगे भाई बालिया तू गुरु नानक नूं की जान के सेवा कीती तू गुरु नानक नूं की जान के पूजिया। भाई बाला कहन लगा मैं गुरु नानक नूं पूर्ण संत जान के पूजिया। ता गुरु अंगद दे पातशाह कहन लगे भाई बालिया फिर गुरु नानक ने तेनू पूर्ण संत ही बना दिता। भाई बाला कहन लगा मैं ता गुरु नानक नूं संत जान के पूजिया ते तुसी की जान के सेवा कीती तुसी गुरु नानक नूं की जान के पूजिया। ता गुरु अंगद दे पातशाह दियां डुब डुब अखां भरियां आख्या मैं गुरु नानक नूं पार ब्रह्म परमेश्वर जान के पूजिया। भाई बाला भी रो पिया कहन लगा फिर गुरु नानक ने तुहानू पार ब्रह्म परमेश्वर दा रूप ही कर दिता। सात संगत बोलो श्री सतगुरु नूं जेहा को कर जाने तेहा फल पावे सोई। गुरु नूं जेड़ा कोई जिस भावना दे नाल पूजदा है उतनियां को बख्शीशां गुरु नानक दे दर तों लै जांदा है। भाई भाई लैणा लै गया लै गया भाई लैणा और फिर गुरु अंगद देव बन बैठा जिदे हिरदे विच गुरु नानक दा निवास है। ते हुण गुरु अंगद देव पातशाह गुरु नानक नूं ही नानक नानक गाउंदे होए की आखदे

0: You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live
1: Sardar, pehla ta ek pinda shal utya, fir aandha nahi khosh hau karta phir.
2: Shabash. Sherya, ye maal paran jo andar.
1: Chokum Sardar. Aye, jabra. Hala khos. Jo jabra.
3: मेरी बॉडी तो देख रही पागल हो जाएगी। मेरी सिंगिंग में कालवी चुके सी की ओर दीवे वालों।

हे शब्द धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शांति दे पुंज बाणी दे बोहित

और आप इतनी शांति नाल सब कुछ बर्दाश्त करी जा रहे हैं। हजूर कहन लगे, इना दे अंदर क्रोध दी अगन भड़क रही है, इना दे अंदर नफरत द्वेष भावना दी अगन भड़क रही है, जो इना नू मजबूर कर दी है कि ए जुलम करन। ए सोच रहे ने कि मैं भी इस तपस दा प्रभावित हो जावा, इस नाल मैनू भी कुछ प्रभाव पवे, पर मेरे गुरु ने, मेरे परमेश्वर ने जो मेरे अंदर एक नाम दा, जो सारिया शीतलतावां दा एक सोमा है, वो ऐसा अमृत नाम बख्शिश कीता है कि ए तपदे होए कड़ाहे, तपदे होए हिरदे उस नाम दी शीतलता नू प्राप्त करके शांत हो जांदे। पर ए शीतलता, नाम दी शीतलता उन्हां नू प्राप्त हुंदी है जिन्हां दे भाग चंगे होवन, जिन्हां दे श्रेष्ठ उत्तम भाग होवन। ए हरी नाम दी शीतलता उन्हां नू प्राप्त हुंदी है, वरना मनुख जबान तो ते जब जरूर जपदा है उस परमेश्वर दा नाम, पर जे अंदर क्रोध दी अग्नि होवे ओ जपे दा कोई फायदा नहीं। जे अंदर लोभ दी लालसा होवे, जे अंदर नफरत होवे, द्वेष भावना होवे, उस रसना तो जपे दा कोई फायदा नहीं। तो हजूर गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सारे संसार नु एक शांति दा उपदेश दिता है। ए क्रोध दी अग्नि बुझ सकती है जे नाम दा शीतल अमृत ओ सरोवर ओ सोमा हृदय विच

पूरे गुरु दा मिलाप होया, उदी बख्शिश होई है। जमदूत मेरे नालों हट गए ने, उन्हां दा सहम मैनू हुण सता नहीं रहा, ओ भज गए ने मेरे।

थोड़ा बहुत जितना जितना कोई जपदा उन्ना सुख पिया पाउंदा। अविनाशी पुरुष वाहेगुरु का नाम जप के हम हर नाम हम श्रीवें

अमृत की है, अमृत है परमेश्वर दा नाम, अमृत। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तैयार करके सिखा नु पियाया ते खालसा पंथ साजिया। पर इस अमृत दी कहानी बड़ी लम्मी, चार युग होए ने, सत युग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग। हर युग विच अमृत पीता गया, पर अमृत पीण दा ढंग वखरा, अमृत लभण दा ढंग वखरा। एक गल होर, कुछ लोकां अमृत पीता पहलियां युगां विच, अमर होने वास्ते कि सानू मौत ना आवे, कोई दुख लागे ना आवे, अपने वास्ते अमृत पीता, अपने भले वास्ते। पर जेड़ा अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिखां नूं पियाया, ओ अमृत आपा वारन वास्ते, जुलम खत्म करन वास्ते, मजलूमां दी रखिया करन वास्ते। तो आओ विचार करिए, पहला सतयुग बारे के सतयुग विच ए अमृत किस तरह मिलिया ते किस तरह पीता गया। पहला हिंदू मत अनुसार कथा, उस तो बाद गुरमत।

एक किस्सा तरती तेन से पानी मनिया गया समुंदर बड़ा वटे एक वरी देवतिया ने विचार कीती देखिए ता सही एडा वड़ा समुंदर है इस विच की चीज है केड़ी केड़ी वस्तु है पर एडे वड़े समुंदर विचों चीजा लभनिया ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा सी सलाह कीती सारे क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदों मिलेगा जदों आपां दही नू रिड़कांगे ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है रस्से दी लोड़ है समुंदर नू रिड़कण वास्ते भी मदानी चाहीदी रस्सा चाहीदा पर समुंदर अथाह है एडे वड्डे समुंदर वास्ते लकड़ दी मदानी बनानी बड़ी औखी ता सारिया देवतियां सलाह करके मंदराचल पर्वत नू मदानी बनाया शेष नाग नू रस्सा बनाया शेष नाग नू उस पर्वत दे द्वाले लपेटिया गया एक पासियों उस सप नू देवतिया ने फड़िया एक पासियों दैंता ने देवतिया विच विष्णु भगवान इंदर आदिक देवते ने दूसरे पास से दैन बड़ी शक्ति ते ताकत वाले एक वरी साप नू शेष नाग नू देवत्या ने अपने वाल खिचिया एक वरी दैनता ने साप नू शेष नाग नू अपने वाल खिचिया ते ओ जड़ा पर्वत सी उस समुंदर दे विच इस तरह घूमन लग पिया जिस तरह चाटी दे विच मदानी घूमदी देवते उस शेष नाग नू अपने वाल खिचदे ने दैंत अपने वाल खिचदे ने ते पर्वत जिहड़ा है उस समुंदर दे विच घूम रहे है बड़ियां भयानक लहरां उठियां जदों लहरां उठियां ते सारिया तू पहला जहर निकलिया जहर बड़ा खतरनाक सी धरती ते सुट देने ता नुकसान बड़ा हुंदा है ओ जहर शिवजी भगवान नू पीण वास्ते बेनती कीती गई ओ सारा जहर शिवजी भगवान ने पीता उस जहर दा असर शिवजी भगवान ते भी होया उन्हां दे गले दा रंग नीला पै गया इस करके शिवजी भगवान नू लोक नीलकंठ भगवान करके भी याद करते जहर तो बाद अनेकां वस्तुआं निकलियां जिन्हां विच काम तीन गऊ पारजात दरखत लक्ष्मी अनेकां वस्तुआं निकलियां लक्ष्मी नू विष्णु भगवान जी ने अपना लिया पारजात दरखत नू इंद्र देवता अपने स्वर्गां विच लै गया जिते अनेकां चीजां निकलियां उथे अमृत दा कड़ा भी निकलिया पर ए अमृत दा कड़ा दैंतां दे हाथ लग गया।

एक गुफा च बह जा। करोड़ा करोड़ा साल हवा खा के हवा पी के तेरा नाम जपा, सुपने विच भी मैं सोवा ना। इन्ना तेरा नाम जपा पर अकाल पुरख तेरे

कीर्तन करने वाला तन गुरु नानक साहब कहंदे ने हों ढाडी विकार मैं उस परमेश्वर दा ढाडी हां उदा कीर्तन करने वाला पर मैं वेला सी कारे कहंदे ने काम

अकाल पुरख के चरणों में बेनती की। गुरु साहबां दी अखां बंद ने, अखां दे सामने एक सूरत आई, लत्तां पतलियां पर भार सहण वालियां, चौड़ी छाती, मत्था चमकदा, अखां विच नाम दी लाली, बोल फरकदे ने, सोहना दाड़ा, सिर ते दस्तार, हाथ कड़ा, गात्रे कृपान, तेड़ कछहरा, सोहनी सूरत देखी तो गुरु साहब जी पुछदे ने, ऐ सूरत तू कौन है? उस सूरत बोली, मैं खालसा। गुरु साहब जी पुछदे ने, तू कित्थों आई है? ओ सूरत बोली, मैं तुहाडे हिरदे विचों आई हां, मैनू हुण तुसी बाहर प्रगट करो, जो चाहिदा सी ओ मिल गया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वापस आनंदपुर साहब आ गए, पर सोचन लगे, ए सूरत बड़ी सोहनी पर किन्नू दया मसंदा नू, पंडता नू, साधुआ सन्यासिया नू, किन्नू दया ए सूरत, क्योंकि जे आपां दुध लैण जाना होवे ते भांडे नू चंगी तरह साफ करके लजाने आ, जे दुध वास्ते भांडा साफ चाहिदा है ते अमृत वास्ते भी तां मन दा भांडा।

आनंदपुर साहब, धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दा दरबार सजे है। एक पासे माइया बैठिया ने, एक पासे पुरुष बैठे ने। सिंघासन ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विराजमान ने। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होए है, कीर्तन हो रहे है। अचानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने अखां बंद कीतियां सन, अखां खोलियां, एक पहरेदार सिख नूं कोल बुलाया ते कहन लगे, सिखा कुछ दूर दरखत है, उस दरखत दे थले एक सिख बैठा रो रहा है, जाओ उसनू प्यार नाल साडे कोल लै आ। पहरेदार चला गया। दूर दरखत थले सचमुच एक सिख बैठा रो रहा है, अखां बंद नहीं, हाथ जुड़े हुए ने, पर बंद अखां विचों अथरू पै गिरदे ने, ते नाले कह रहा है, ऐ सच्चे पातशाह मैं की गुनाह कीता है, की पाप कीता है, काबुल तो आया, तेरे दरबार पहुंच गया, पर तेरे दर्शन करन दा मैनू हुक्म नहीं। पहरेदार सिख पहला तो सुनदा रहा, फिर मोढ़ा फड़ के हिलाया, ते नाले कहा, सिखा तू कोई पाप नहीं कीता, तेनू ते आप कलगियां वाले ने याद कीता। उससे कुठिया अखां पूंजदा होया पहरेदार दे नाल तुर पिया। जदों दरबार विच दाखल होण लगा, इथे भी एक पहरेदार खलोता सी, उसने कहा, ए काबल वाला सिख दरबार विच नहीं जा सकता। नाल आया पहरेदार कहन लगा, ए दरबार क्यों नहीं जा सकता? तां खलोता पहरेदार कहन लगा, जेड़ा वड्डा मसंद है चेतो, ओदा हुक्म है इस काबल वाले सिख नूं दरबार विच नहीं जान देना। ते सुन के नाल आया पहरेदार कहन लगा, जेड़ा चेतो मसंद दा मालिक है कलगियां वाला, मैनू ओदा हुक्म होया। ए सुन के पहला पहरेदार परां हट गया। सिख दे हाथ जुड़े ने, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सामने पहुंचे, दर्शन कीते, अखां विचों अथरू वगन लग पए। तीन दिन हो गए सन रोंदे हां, अरदासां करदे हां, गुरु दे दर्शन कीते, अपना सिर चरणा ते रख दिता, ते कलगीधर पातशाह सिर ते प्यार नाल हाथ फेरदे ने, ते नाले बड़े प्यार दे नाल कहन लगे, सिखा काबुल तू आया, तीन दिन हो गए ने तैनू रोंदे हां, सानू पता है, सिखा साडे नाल बड़ा प्यार करना है, पर साडे वास्ते बेटा की लैके आए। साध संगत, गुरु किसी चीज का भुखा नहीं, गुरु ने बेटा क्यों मंगी, ए ते गुरु का कौतुक है। कहन लगे, सिखा साडे वास्ते बेटा की लियांदी। सिख हथ जोड़ के कहन लगा, पातशाह मैं की देन जूगा, सब कुछ आपदा है, मैं सुनियारा वा, हाथियां दे दंद दा एक कंगन जिदे विच हीरे जड़े हुए सन, मैं आपदे वड्डे मसंद चेतो नूं उदों दिता सी जदों काबल गया सी, दूसरा कंगन जिदे विच हीरे जड़े ने मैं लैके आया सां, ओ कंगन मैं चेतो मसंद नूं दे दिता,
क्योंकि जेतो ने कहा सी कि सिखा तेरे नाल गुरु साहब जी बड़े नाराज ने, तू दरबार विच ना जाई। ए सुन के गुरु साहबा ने अपने दोनों हाथ अगे कर दिते ते नाले कहन लगे सिखा ऐ देख मेरे हाथ ते खाली ने, तेरे कंगन मेरे को नहीं आए। सिख ने कहा पातशाह मैं ता चेतो मसंद नू दिती सन, ते चेतो मसंद संगत च बैठा सी, उठ के खड़ा हो गया। कहन लगा पातशाह ए झूठ बोलदा है, ए कंगाल कंगन के

पंडिता की प्रीख्या ले दो लंगर लाए एक विच मास बनाया एक लंगर सादा बनाया ते साहबा ने कहा जेड़ा मास वाला लंगर छकेगा ओनू बहुत ही माया मिलेगी जेड़ा सादा लंगर छकेगा ओनू घट माया मिलेगी मास खाण दे नाल सोने दियां मोहरां ज्यादा मिलनियां ने ए सोच के बहुते मास वाले पासे बैठ गए सादे पासे घट बैठे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिन्हां ने सादा लंगर खाधा उन्हां पंडतां नूं चोखी माया दित्ती ते जिन्हां ने मास वाला लंगर खाधा जिन्नी कही सी उन्नी उन्नी माया उन्हां नूं दित्ती पर इन्हां वल्लों भी मन उदास हो गया कि जिहड़ा आदमी माया बदले अपने धर्म ते पक्का नहीं रह सकदा ओ जुल्म दा

साधु सन्यासी सारियां दी प्रीख्या लई सारियां पासियां तो नाराज होके हुण गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने साध संगत ते

खाली हो चुका सी ते जड़े दूर दूर भज गए सन भजे भी जा रहे ने ते पिछे मुड़ मुड़ के भी देखते जाते ने कोई फड़न ते नहीं आ रहे पर पंजवी तो बाद गुरु साहब जी दोबारा नहीं आए जड़े बैठे सन प्यारो भी करते पर समझ नहीं आती कि गुरु साहब जी सिर क्यों मंगते बड़ी देर हो गई बैठे उड़ीकते पे ने हुण गुरु साहब जी उस तंबू विच बाहर निकले कृपान म्यान विच है चेहरे ते हुण रौनक प्यार है ओ पंजो जिन्हां दे सिर वड्डे सन ओ ते जिउंदे इक वर्गे कपड़े पाए ने गात्रे कृपान सोहणियां दस्तारां हत्थां विच कड़े तेड़ कशहरे हाथ जुड़े ने पंजो जने पिछे पिछे में आ रहे ने जिवें अगे चंद ते पिछे सितारे तुरे आंदे गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह अपने सिंघासन ते बैठ गए सामने सर्वलोह दा बाटा पे है जिद विच पानी पाए विशकार दो तारा खंडा रखे

दे मना दी अवस्था ए हो गई, बाप दिलासा मेरो कीना, सेज सुखाले मुख अमृत दीना। साडे बाप कलगियां वाले ने अपने हथां दे नाल साडे मुंह विच अमृत पाया। हुण पंजां दे अगे हाथ जोड़ के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप खड़े हो गए कि सिखो हुण तुसी गुरु हो, हुण मैनू अमृत दियो। इस दुनिया विच एक नवी गल सी कि गुरु चेला बन गया ते चेले गुरु बन गए। दया सिंह कहन लगे, पातशाह असां सिर दे के अमृत लिए, तुसी अमृत मंगदे हो, तुसी की भेटा दियोगे? ता गुरु साहब ने कहा, मैं अपना पिता हिंदू धर्म दी राखी वास्ते पहला दे चुका, मेरा परिवार है, मेरा अपना आप सब कुछ भेटा कर दियांगा, पर मैनू अमृत छकाओ। पंजा प्यारिया गुरु साहबां नू अमृत छकाया ते हुण गुरु साहबां दा नाम भी बदली हो गया, गोबिंद राय तू गोबिंद सिंह। ते दूर सारियों एक साधु उठी, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। तन है गुरु जिहड़ा आपे ही गुरु बनिया ते आपे ही चेला बनिया, एक नवा राह दुनिया नू दिता। ए जरूरी नहीं कि गुरु हमेशा गुरु रह सकदा ते चेला हमेशा चेला, कहन लगे नहीं। जदों खालसा साजे फेरे किया कि हुण तुहाडे विच ते मेरे विच

आज हम गुरु नानक के शरीर के दर्शन करते हैं, उनके चरणों की छोर प्राप्त होती है। कितने बड़े भाग होते हैं हमारे। लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते हैं। भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

तो जागता है। गुरु सूरज के माफिक है, ये बात अलग है। हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद। दरवाजे खोल।

श्रेय लगेगा, अगे ओ वधेगा, आत्मक उन्नति ओ करेगा जेड़ा गुरबाणी नूं खोजेगा, समझेगा, विचारेगा, अमल विच लियावेगा। कहिंदे ने ना कोई समझे, कसूर किसे होर दा तां नहीं। मिसाल भाई साहब ने बड़ी प्यारी दिती, कहिंदे ने समुंदर दीआं तहां विच पता नहीं कितना कुछ पिया। पहला तां समुंदर दी गहराई नहीं पता लगदी, ते जो कुछ धरती ते उपलब्ध है ना, सवाए कुछ कुछ चीजां जिहड़ियां धुप ते खुशकी मंगदियां, बाकी धरती का सारा पदार्थ समुंदर दे अंदर मौजूद है। सोना चांदी हीरे जवाहरात इथों तक कि इस वेले तां बंदा अपनी खाद खुराक के मामले विच भी समझदा ना, धरती तो पूरी ना हुई ते समुंदर दीआं तहां विच बड़ा कुछ मौजूद। समुंदर दीआं तहां च पाए जाण वाले इतने ऐसी किस्म के पौधे ने जिहड़े हेठां तहां विच ही पलदे ने, तहां विच ही खत्म हो जाते। यह तां शरीरक लोड़ां साडियां कि असीं उधर झाकणे, बाकी बड़ा कुछ इतना है। धरती ते वरतों विच आ रहे सोने नालों दर्जना गुणा ज्यादा सोना समुंदर दीआं तहां विच मौजूद है। कितने हीरे जवाहरात ते समुंदर दी तह ने लुका रखे, पर हथ किनू आउंदे ने। आपां इक मोती की गल करी, सिद्धियां समुंदर दे कंढियां ते पईयां रुलदियां, उन्हां च मोती नहीं होंदे। जिवें असीं गल्लां बड़ियां करने आ, हर गल का मतलब नहीं होंदा, हर गल विचों कुछ लभण वाला नहीं होता। लभदा उस सिप्पी विचों है जिहड़ी खास टिकाणिआं उत्ते वड्डे आकार दी, जिहदे विच जीण वाला जानवर, उस सिप्पी दा जानवर जिहड़ा मोती जानवर जिसनूं कहिंदे ने, उह अपनी लभ तों अपने अंदर आए हुए पानी दे कतरे नूं जां रेत दे दाणे नूं अपना लुआब लपेट के मोती बना दिंदा। उह मोती ना केवल सिंगार दे काम आया, बल्कि उस मोती ने कई बार मनुख दीआं कई बीमारियां नूं कट के दवा दा काम भी कीता। भावे गल वखरी, अज दे वैद चुके कीमती सिप्पियां नूं पी के ते मोती कह के वेच देंदे, सिप्पी दा ही पुछता करदे ने, कहिंदे ने भी तां उसे लब तों ही बने है जिस तों मोती बणदा। लेकिन नहीं, सिप्पी सिप्पी है, सिप्पी दे अंदर बनने वाले मोती दी कीमत बहुत ज्यादा है। राजे महाराजे उहदा मुल पाउंदे सन, पर हर कोई तां उस मोती नूं ना लै सकिया। आखिर किसे ने पानी दे अंदर कुद के, पानी दे अंदर गहरी छलांग लगाई। अज तां बड़े साधन हो गए, पुराने समयां च साह रोक के डुब्बियां मारदे सन, साह रोक के। इन्हें अभ्यासी लोग किन्ना किन्ना चिर साह रोक के घड़ियां बधी, उस समुद्र दीआं तहां विच मोती दी सिप्पी लभदे सन, लभ के लिया के उहदे चों खोज के, फिर हर मोती चों सिप्पी नहीं लभना, किसे किसे मोती चों लभना, किसे किसे सिप्पी विचों मोती लभना, उहनूं विन्न के मुल पाउणा जाणदे सन। इह इक मोती दी गल नहीं, भाई साहब तां कहिंदे ने समुंदर च बड़ा कुछ है, पर उह मोती जिहड़ी है ना केवल गोताखोरां दी खोज दी सिटे दी फल दी गल है, बल्कि एक होर भी गल है कि जिवें मान सरोवर च कहिंदे ने मोती बहुत हुंदे, पर उत्थे किनारियां ते बैठे बगले सिप्पियां ते डड्डुआं नाल ही कम सारदे ने। हंसदी क्योंकि खुराक मोती है, ओ सिप्पी मोती वाली सिप्पी चुन के लियांदा है, तहि विचों डुब्बी मारदा है, चुन के लियांदा है, उस सिप्पी नूं खोलदा है और बड़ी औखी खुलदी। इह जानवर ऐसा घुट के मीटदा है अपनी सिप्पी नूं, बड़ा मुश्किल खुलदा है। आम तौर ते इस मोतियां दे जिहड़े खोजी हुंदे ने इहनूं धुप्पे सुट छड्डदे ने, उह मर जांदा सुक के ते विचों मोती कढ लैंदे, पाणी दी थुड़ तों मर जांदा सुक जांदा, नहीं तां सिप्पी खोलणी इक मसला बण जांदा। लेकिन हंस करदा है मेहनत, उस सिप्पी नूं खोल के मोती जानवर दे मूंह विचों, उहदे कब्जे विचों मोती कढदा है ते कढ के निकल लैंदा है।

साहिब सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह दा जिन्हां ने यह हुक्म सुनिया नंदेड़ सचखंड साहिब पातशाह जी हजूरी विच सजके जदो तख्त चवर दे मालिक साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब नूं थापिया गया इत्थे प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा ते हुक्म दे अंदर बड़ा फर्क है। प्रेरणा किसे नूं कीती जाए वह प्रेरिया जाए ना प्रेरिया जाए उहदी मर्जी। जो हुक्म किसे नूं सुनाया जाए जां तां हुक्म मन के प्रवान हो जाओ ते जां हुक्म अदूली करके गुनाहगारां दी कैटागरी शामिल हो जाए। हुक्म दा अर्थ दूजा नहीं निकलदा है, या वह मन्या जांदा है ते जां उसकी अवज्ञा हुंदी है। अवज्ञा करन वाले नूं जो सजा हुंदी है यह सारा संसार जानदा। हुक्म लॉ एंड आर्डर नूं कोई ना मन्ने ता जो उसका हशर हुंदा है, जो उहदे नाल वर्तारा वरदा है, किसे भी अग्ञानी तो अग्ञानी पुरश तो भी भुला नहीं। कलगीधर पातशाह दा इह हुक्म है सब सिखन को हुक्म है कि गुरु मान्यो ग्रंथ। ते इह हुक्म कलगीधर दा सुन के ते उहदा कहाउण वाला कोई गुरु का सिख किसे देह दे अंदर गुरु का विश्वास रखी तुरिया ते ऐसी कलगी धर दे हुक्म की अदूली करन वाला अपने आप नूं सिख किवें इखला सकदा है। उहदा तां इह हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे जो प्रभ को मिलवो चाहे खोज इन्हीं में ले। ते जे गल्लां करनी है जे बातां करनी है जे दीदार करना है ते बह जाओ हजूरी विच सज जाओ आके इशनान करके। जल्दी साहब की बख्शिश है भी जदों गल्लां करोगे तुहाडी रसना ती आप ही बोल बोल तुहानू सुनाई जाऊगी ऐ कर आ ना कर आ मार्ग अख्तियार कर ए उत्तम है ए प्रमाणिक है ए ना प्रमाणिक है। तुहाडी रसना ते बैठ के तुहानू समझाई जाओ। ऐसा होर चतर दुनिया का गुरु कौन हो सकता जिहड़ा तुहाडी रसना नूं वरत के आप ही तुहानू कही जाए। जल्दी बोलण वेले तुहानू ही गुरु बना दे। कैसा विचित्र साहब सतगुरु का एक करिश्मा है ते जिन्हें भी प्रभु नू खोजना है ते इहदे विच समाया है। ते राह दसेगा गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दसणगे भी गुरु अकाल पुरख की प्राप्ति का मार्ग की है। आपे दसणगे जो गुरु सतगुरु का जो सिख का आपे बोलणगे। जिहड़े कहिंदे ने इह बोलदा नहीं इह सुनदा नहीं ते मैं समझदा हां रब ने संसारक कन्न तां उहनां नू दित्ते पर गुरु ग्रंथ साहिब बोलदा सुनने वाले कन्न नहीं उन्हां नूं दिते। नेत्र तां दिते पर साहिबां दी दसे सतगुणां दी जोत वेखण वाले नैण नहीं दिते। सुन के अमल करन वाली गुरु ग्रंथ साहिब दा ज्ञान करवाउण वाली शब्दावली सुनदा उन्हां नूं संसारक तौर ते तां इंदिरा कर्ण बख्शिया है पर साहिब ने गुरु ग्रंथ साहिब दा उपदेश सुन लई नहीं दिता। इस लई सब सिखन को हुक्म है औते को मथा ते गुरु मानियो ग्रंथ। आओ बीबिया तो शब्द सरवण कर लो ते साहिब सतगुरु पातशाह दी मेहर दा सदका दी चितता करदा नहीं पर बदे रुदे बाबा जी दी क्योंकि सेहत मैं समझदा भी गुरमुख भुल जांदे ने अपना आपा शरीर दा। जे हरजस ना हुंदा होवे ते संसार दीआं गल्लां बातां हुण फेर भावें शरीर दे विच उहनां दी सुता आ जाए ते महसूस करन वी सानूं कुछ खेद है पर जे शरीर दे विचों शब्द दी टंकार दे नाल कोई गुरमुख सुना के गुरु का कीर्तन ते गुरमुख गुरसिख महापुरख की आत्मा नूं उहदे असली टिकाणे ते लै जाए उहनूं शरीरक कष्ट भुल जांदे। सो साहिब दी बख्शिश है मेरी तां इह अरदास है इस गुरमुख आत्मा नूं सतगुरु सदा लंबेरी आजु ते अरोगता बख्शे तां जो असी संगत करके दीदार करके इन्हां दी कमाई दा किश्मा वेख के कदे साडे मूर्खां दी भी सुरत इस पासे नूं पलटे ते असी भी कुछ अपना परमार्थ दा धन पल्ले बन के जिस मार्ग दे उत्ते हर एक ने समय समय अपनी वारी सिर तुरना है असी भी अपनी वारी सिर तुरन तो पहला कुछ ना कुछ पूंजी विहार लईए ते जिहड़ी सानू उत्थे कम आ सके। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।